0: uzaqhala ukuthi ingqomo lomthi inxabe manxani kathi kobuthina xa inkwasi timirini
1: kathi xa inkwasi timire ures khonwa esikaro mathi uyela kangane lexowa sakhwexa kuthi nakuxa sikaro mathi kukhawro da tangahanla sisti misa ures kabe tangahanla sisti xwabikini khawu timire ures hemisbas ngasembele kepese kayise xa mnandiza cuyra nga turo kana kuda unaske nek karabai da ke sada kambizi ngani nga chi kambizi mari abi kui lapti ngusa unwa pache tuwita nama kuwa bila ministi nguske neche sada di kawasam sari na tori na sende ni daba nira ha yeskola gato kopa hemis pati ngani kaza tenera kwa ngu chila kau kwen kito neri ngusi si kisi abe mare mi kare chila toko pala ki ngas kuwa ra kau kwen chila kumka ये चलते से कि को अपना सीटी का सी आंग वा सीटी आमी ना कि अबे कोई कोई ना था सरू इंगा था क्या कमेंस आ दी का मारी को हाथ से वास कॉलेज का खाओ के दिन कमेंस कमेंस ने दाउ वास के सारे के लिए काव बजे बहु ने बजे कही के कई समय से सोशल सेक्रेटरी साथ को हाथ सी और सी टेस्टिंग के को हाथ इन्हें स्पेस क्लास का तुम कहाँ तक गिरा मैदान नेतेस ना मेरा कमीशन चिका कैसे तुम सब को अपना कार्यक्रम को आगाम अबे खास को तो मावा या मिल रहा है इसको तेरे ये वो नहीं सी उस तरह की टूरिस्ट में से ना स्वाभिन्न से मेरा हाँ खबर मेरा क्या कार्यक्रम को आगाम मेरी कुन मावा मेरा माँ से कुछ नेस को आगे तो हो बारा काम सी प्यारे से बरा खाऊं के फिर � Kelas kita kerja kerja dalam kumi kerja apa juga itu kumi kat karota. Bye bye.
0: Bye bye.